कबीर साहब कहते ने सब कुछ छड़ दिता है, तनना भी बुनना भी, हुण इक रब का नाम है लिखिया होया अपने हिरदे ते, किड्डी वड्डी गल है। सब कुछ छड़ के मैं हरी का नाम, रब का नाम, हरी दे चरण वसाए हुए हैं।

आमें। मेरी जात होची है, मेरी पत होची है, पर मैं इकला जरूर खटिया जेड़ा आम आदमी नू नहीं मिलता। असी लोग आम जग्यासु जीव सारी उम्र छोटे छोटे लाभां नू वेखदे रहने। भाई बड़ा कुछ कमा के, बड़ा कुछ पा के चीज दी समझ आंदी है कि रब दे नाम तुल कुछ नहीं। जेड़े मेरे वर्गा कोई गरीब फकीर होवे ओ सारी उम्र नस्सा फिरदा दौलत दे मगर, पर जेड़ा बहुत कमाई कर लवे ओनू फिर पता लगदा है कि सब तो वड्डा जो है रब दा नाम है। कबीर साहब कहंदे हन, होछी मत मेरी जात जुलाहा, हर का नाम लियो मैं लाहा।

तेरा इन्हें की आख दी का किस नाम सिमर प्रभ अपना गुरसिख अमृत वेले उठ जा इशनान कर ते इशनान करके अपने प्रभु का सिमरन कर नाम दे विच लीन हो जा सिमरन दे विच जुड़ जा यही तेरी रहनी यही मर्यादा है।

सागर ज्ञान दा, सागर आत्मक सुखां दा, सागर अकाल पुरख दी सच्चाई ते वडियाई दा, सागर सच्ची ते

लक्ष्मी पैसिया नू के माया नू हुण जिहड़ा मत्था टेकदा है वो पैसे भी रखदा है ते लक्ष्मी इस तरह वरसन लग पई जिस तरह मीह पैंदा है भाव गुरु साहिबां दे चरणां दे अगे माया दा ढेर लग गया।

लोटा गुआच गया, पैसे गुआच गए, तो सारे पांड सिद्धां कोल गए, साडा लोटा लभ दिओ किसे ने चुक लिया, हुण लुकोया सिद्धां नहीं सी, लभ के किवें देंदे। सिद्धां ने लोटा जान के लुकोया सी, असी लुकोवांगे, पांड साडे कोल आणगे, असी भेजांगे गुरु नानक दे कोल। साडा लुकोया लोटा कोई लभ नहीं सकदा, ते गुरु नानक हार जावेगा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ओही गल सिद्धां ने पंडा नूं कहा, ओ जिहड़ा गुरु नानक बैठा है, जाओ उहदे कोल, उस नूं आखो जे उहदे विच कोई शक्ति है ते तुहाडा लोटा लभ देवे। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਡ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਲੋਟਾ ਲੱਭ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ,

आखो सतनाम श्री वाहे। पंडा ने बेनती की, बाबा जानी जान पुरख, वो बाबा नानक वो ते जानी जान। सिद्धा ने जिथे लोटा लगोया सी, गुरु नानक साहब ने उथों कढ दिता। हुण लोक जय जयकार करन लग पे। सिद्धां दा लुकोया लोटा कोई लभ नहीं सी सकदा, पर बाबे नानक ने लभ दिता। गुरु नानक दी जय जयकार होण लग पई, पर सिद्धां नूं होर गुस्सा चढ़ गया।

चाहना ते है तू परमात्मा दे नाल मिला, पर किवें तेरा मिलाप परमात्मा दे नाल होवे। जेड़े गुण परमात्मा चाहुंदा है वो तां तेरे विच नहीं हन, क्योंकि चंगा इंसान किसी

ना ही कोई ऐसा ढंग है ते ना ही परमात्मा मेरे मिठे बोलने जिहड़े बोल बोल के मैं तेनू अपने आप ते मोहित कर लवां। ऐसा गुण मेरे अंदर कोई भी नहीं है, मैं ते अवगुणा दा भरिया। तकना के परमात्मा रूप

गुणवंत है, कुलवंत है, पतवंता सज्जन है, जिद हिरदे अंदर प्रभु दे नाम दा निवास है। हे परमात्मा, मेरे अंदर ते अवगुण भरे ने गुण ऐसा कोई भी नहीं। हे परमात्मा, आप दी मंग है कि बोल मिठे बोल, मैं जद बोलना कौड़ा बोलना, ते मेरा परमात्मा कैसा है? मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। ओ मिठा बोल बोलदा है ते हुक्म करदा है भाई मिठा बोल बोल, जो बोल बोलने करके किसे दा भला होवे, किसे दा मन

फिर तुसी दसो कि अपने अवगुण किवें बख्शाए जा सकते ने। वो सतगुरु साडे अवगुण बख्श भी देवेगा। भाई साहब कहिंदे ने, मैं विश्वास नाल कहिंदा वा कि हे मनुख तू अवगुण करने छड़ दे, ओ परमात्मा तेरे अवगुण बख्श देवेगा। ऐसा नहीं कि अवगुण भी करी जाए ते नाल दी नाल बख्शाई भी जाए, नहीं एक दिन तौबा कर ले, ओ ते बख्शन जोग है ही, उन्हें ते बख्शते रहना है। पर ऐसी गल नहीं कि तू अवगुण करदा ही चला जावे, नहीं तू तौबा कर, सतगुरु दा सिमरन कर।

माया जिसके आम तौर से बंदा फसिया बेरसी पैदा कर पैदा रब तो टुट जाता है तत् रस तो टुट जाता है। भगत जी कहते हैं इस बेरसी तो बचने वास्ते इस संसार से तब ही छूटो जो माया न लपटा। संसार दिया बेरसिया तो छोटे छोटे रसा तो पैदा होने वाली बेरसिया तो बचने का एक तरीका है कि माया के चक्कर विच ना माया नाम गर्भ जोन का देह तज दर्शन पावो। ये जरा मुड़ मुड़ के जन्म लेना है ना यह माया का वड्डा कम है। सिट्टा ये चक्कर च पैण का मतलब ही है कि मुड़ मुड़ के जमन में आना। मैं हूं इस चक्कर च नहीं पैदा यह चक्कर छड़ के मैं प्रभु के दर्शनों च लीन होने की चाह लैके अगे वध रहा। इत कर भगत करें जो जन जिहड़े इस तरह भगती करते हैं तीन भौ सगल चुकाई है उन्होंने विकारा का डर नहीं रहा विशे का व्यो का डर नहीं रहा। कहत नाम दियो बाहर क्या भरमो बाहर की भटकना है बाहर रस नहीं है रस तेरे अंदर है बाहर क्या भरमो। यह संजम हर पाई है रब न मिलना ही रस न प्राप्त करना ही क्षमा करना सत संगत कई बार ऐसा भी होया धर्म के मार्ग से चले हैं।

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह, सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, गौड़ी चेती महला पहला दा ए शब्द जो आप जी ने सरवण कीता है, इस शब्द के द्वारा साड़ी जिंदगी दा जो एक सफर है अते ओ सफर दी मंजिल नू असी जो खो चुके हैं, उस दी बाबत सानू महाराज एक बड़ी तकड़ी जोल्ट दे के सानू वापस जगा रहे हैं। सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज एक पंक्ति दे विच बयान करते हैं कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। वो जीवन नू एक यात्रा आखते हैं अते आखते हैं कि ए सफल हो गई है। इमेजिन करो कि वो किस किस्म की थ्रिल होएगी, किस किस्म का वो प्लेजर होएगा, किस किस्म की स्टेट ऑफ माइंड होएगी जिस दे विच एक चेतना ए अपने जीवन च खुद आख सके, उसनू जी सके, उसनू इम्बाइब कर सके कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। हाउ मैनी ऑफ अस कैन क्लेम दिस कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। हाउ मैनी, इनफैक्ट सानू तो यह भी नहीं पता कि जीवन की कोई यात्रा भी है। सफल होना तो बहुत दूर की गल, सानू यह भी नहीं पता कि असी अपने जीवन की यात्रा च जा किधर नू रहे, मंजिल वल नू या मंजिल तो दूर। बाबा जी ने अपनी बाणी दे विच एक पंक्ति उच्चारण की है जिथे वो आखते हैं असी मंजिल दे करीब तकी जाना, असी मंजिल तो बहुत ज्यादा डिस्टेंट हो गए हैं, बहुत ज्यादा दूर चले गए हैं। पंक्ति सुन वाली है, कहते हैं साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करीजे, तावत ताए तावै प्रीत माया लख।

जल की भीत, पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा, हाड़ रह रहा है, अनेकां तरां दे दुख तसीहे तकलीफां मुश्किलातां दर्दां ए चल रहा है इस पिंजरे दे विच रह के। गुरु जी आखदे ने इंसान तू इस पिंजरे दे विचों निकल, तेरी रियल सक्सेस इस गल दे विच है कि तू वापस इस पिंजरे दे विच ना आवे, अपने निज घर दे विच चल जाए जिथों तेनू कदे वापस ना आना पवे, निज घर दे विच चले जाए। रूटीन वजों असी गुरबाणी दियां पंक्तियां पढ़ते हैं पर वह सानू उस तरह स्ट्राइक नहीं कर दिया जो उन्हां दा भाव है। सच्चे पातशाह अपनी बाणी च आखते हैं निज कर महल पावो सुख सहज मोहर ना होएगो फेरा। जदों तुसी अपने निज घर दे विच चले जाओगे इसका भाव यह होया कि हुण असी अपने घर दे विच नहीं हैं। बेशक असी सब सोचते हैं कि साढ़े पास घर है पर महाराज कहते हैं वो तुहाडा निज घर नहीं है। निज घर महल पावो सुख सहजे कहते उत्थे जाके ही सुख अते सहज तुहानू प्राप्त होना है, बहर ना होएगो फेरा अते द्वारा फिर फेरा नहीं पाएगा, द्वारा फिर आना नहीं होएगा। पर सवाल पैदा है कि साड़ी जिंदगी दे विच ऐसी अवेयरनेस क्यों नहीं आती, ऐसी जागरूकता क्यों नहीं आती, असी कंसर्न क्यों नहीं हुण निज घर दे विच जाना, जम्मण मरण दे विचों मुक्त होना कोई साडे लई कोई खास वड्डा इशू नहीं। इट इज नॉट अवर डे टू डे लाइफ इशू विच बॉदर्स अस, नो, ये कोई साडे लई खास समस्या नहीं। सानू सबना नू अपने अपने अंदर ईमानदारी दे नाल अपनी सच आवाज नू सुनना चाहिदा है कि की असी सच्ची इस इशू नू बहुत अहम अपनी जिंदगी च समझदे हां, की ए साड़ी कोई प्रायोरिटी लिस्ट दे विच किते आंदा है। साड़ियां होर बहुत सारियां प्रायोरिटीज हन, बहुत सारे एजेंडाज हन, बहुत सारे गोल्स हन, पर यह गोल जो है वो सिर्फ कहन सुन मात्र है। दिस डज नॉट बॉदर अस। पर गुरु महाराज जी कहते हैं कि मेरी जीवन की यात्रा सफल ही उदों हुई है, मेरी रियल सक्सेस लाइफ भी इस गल दे विच है कि मेरा आना जाना जड़ा है वो खत्म हो गया, आवन जान रहे मिल साधा। अते गुरबाणी दे विच ए इशू बहुत भारा है, बहुत भारा इशू है। प्रभ जन्म मरण निवार, इस दे विच देखो एक तरला, एक पुकार, एक बेनती, एक जाचना है कि ए प्रभु मेरे ते कृपा कर, मैनू जन्म मरण दे विचों निकाल ले, मेरा जन्म मरण खत्म कर दे। प्रभ जन्म मरण निवार, हार परयो द्वार, मैं हार के तेरे द्वारे ते आके डिग पिया हां। तो साध संगत जी, असी अपने जीवन दे विच क्यों नहीं इन्हां तमाम एस्पेक्ट्स के प्रति फिक्रमंद क्यों नहीं, चिंतातुर क्यों नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने इस शब्द नू आरंभ इथों कीता है, अमृत काया रह सुखाली, कहिंदे जिस देही च तुसी रह रहे हो ये देही अते तुसी इस दे नाल जुड़े हुए हो ये बड़ी सुखाली, बड़ी कंफर्टेबल, बड़े आराम दे विच है।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕਦੇ ਅੰਤ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਇਆ ਰਹੇ ਸੁਖਾਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਅਮਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਸੁਖਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਤੀਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

राजा हरिचंद बड़ा धर्मात्मा राजा होए, इसकी घरवाली भी बहुत धर्मात्मा सी। वड्डी राती उठ के सतसंगत विच जाके बैठना ते फिर राजे दे उठन तो पहला पहला आके फिर आके सौ जा। इसे तरह कितना समा सतसंग करदी रही, नाम दा रंग चढ़दा रहा, अकाल पुरख वाहेगुरु दी कृपा होंदी रही। क्योंकि रंग लागत लागत लागत है, जेहो जी कोई संगत विच बैठदा हौले हौले ओहो जिहा ही रंग चढ़ जांदा। क्योंकि पंछी जेहो जे ब्रिश ते बैठेगा ओहो जे ही फल प्राप्त होणगे, जे अंब दे ब्रिश ते बैठा है ता अंब ही मिलने हैं। इसे तरह मनुख दा जीवन जे साकत पुरशां विच जा पवे ता पापां दा भागी बन जांदा है, जे सत संगत विच जांदा है ता इसते पुन वध जांदे हैं। राजा हरिचंद दी घरवाली रोज सत संगत विच जाके गुरबाणी का कीर्तन सुनना, आनंद मानना, क्योंकि ये भी आत्मा की खुराक है। जिस तरह साडे शरीर नू खुराक की लोड़ है, साडी आत्मा नू ही परमेश्वर के नाम की लोड़ है। वो नाम का भोजन छकती है जो साडे अंदर, जिदे सदके साडा शरीर चल रहा है ना, उसनू ही भोजन की भुख लगती है। पर वो भोजन नाम का छकती है। उच्चारण करो श्री। तो तारा राणी सतसंगत विच रोज जाना ते राजे दे जागन तो पहला पहला आके फिर सौ जाना। अज अचानक राजे दी जाग उगड़ी तो की तकिया कि राणी नहीं सुती। मन विच शक पैदा हो गया कि किधर जांदी है अद्धी राती उठ के। मन विच सोचिया जितने तक कोई अखी ना वेख लईए उस तरह एवं किसी नूं कलंक लाउणा या कह देना चंगा नहीं है। चंगी तरह शान बीन कर लेनी चाहिदी है भी किधर जांदी है। ता राजा अज सुता नहीं पर उवें ही कराड़े मारन लग गया। ते राणी ने समझिया भाई हुण आराम विच हो गया है। ते राणी सतसंगत वल तुर पई। मगरे मगरे राजा जा रहा है। राणी जदों सतसंग विच जा पहुंची ते मन नूं त्रयास आया भई चलो किते माड़े पासे तां नहीं ना जांदी, किते माड़े पासे तां नहीं ना गई। अकाल पुरख वाहिगुरु ईश्वर दी भगती विच ही जुड़ी हुई है। पर राजे ने राणी दी एक खड़ाओ चुक के घर ले आंदी। भई पुछांगे भई तेरी दूजी खड़ा किथे है। ते राजे ने आके संदूक विच उस खड़ा नूं बंद कर दिता। राणी जदों कीर्तन सुनदियां कीर्तन दी समाप्ति होई ते बाहर निकली तां एक खड़ा दा जोड़ा पिया। बड़ी डरी कि मैं राजे नूं की जवाब देवांगी, जदों पुछेगा भाई दूजी खड़ा किथे है तो मैं जवाब की देंगी। मुड़ के जाके साध संगत विच जाके बेनती की कि साध संगत अरदास करो मेरी दूजी खड़ाओ मैनू मिल जावे, मेरी पत रह आवे, मेरी इज्जत रह आवे। जे राजे कोल ए पोल जार हो गया तो राजा मेरे ते शक करेगा। उच्चारण करो श्री। सारी संगत ने जदों अरदास कीती तां अकाल पुरख वाहिगुरु ने ओह जी पुरानी खड़ावां परमेश्वर ने भेज दिती। कोई पछाण नहीं सकदा कि ए पुरानी है या नवी है। राणी आके उसे तरह रोज दी तरह सौं गई। सवेरे जदों राजा उठिया तां कहन लगा आ जरा अपनियां खड़ावां तो दे, मेरिया हैन नहीं इथे नेड़े ते मैं इशनान कर दवां। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु।
ਰਾਣੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਖੜਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੜਾਵ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸਾਂ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੇਟੀ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੜਾਵ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਖੜਾਵ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੇਰੀ ਖੜਾਵ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਖੜਾਵ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਏ? ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨੈਣ ਕਟੋਰੇ ਭਰ ਆਏ। ਆਖਿਆ, ਰਾਜਾ, ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਜਿਆ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਪਤ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸੋਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ, ਵਡਿਆਈ

0: टेक है क्या गुण तेरे साथ माली शुरुआत है मैं मूर्ख की केत की बात है कोट अपराधी दरिया रे गुरु नानक सुनिया पे किया
1: से फिर गर्वास ना पड़े।

भाई बहुत मद जो बास बस्त है मुकुरमा है जैसे छाई तैसे ही हर बसे निरंतर कटगी खोजो पाए बार पीते एक जानो एक गुर ज्ञान बताई नानक बिन आपा जी ने मिटे ना।

हुरमत हुरमत में ना मन नेचल होए ना उन मन लिवलाई अंग अंग भंग रंग रूप।

मेरे हृदय च कपट है ते तू मेरे कपट नू जानना। मैं भी कुछ जानना, मैं सिर्फ इना जानना कि तेन बख्शना भी आउंदा। जे तू साडे दिल दियां जानना है ते तेन जान के फिर बख्शना भी आउंदा। वेख के साडे बारे जान के फिर खिमा कर देन दी भी गल तेरी है, ते जे साडे वल्लों गिणिया जावे ते फिर तां बड़ा मुश्किल है। जे मालिक तेनू प्रवान करन वास्ते, तेनू प्रवान होन वास्ते, तेनू प्राप्त करन वास्ते मैं अपने वल वेखा ना, मेरे कोल रूप है ना, मेरे कोल अखां ने ना, अखां विच ओह नजर है जिहड़ी तेनू वेख ते माण सके, ना मेरे कोल रूप है जिहड़ा तेनू दिखाया जा सके, ना मेरे कोल जबान है जिहदे विचों मिठे मिठे बचना नाल मैं तेनू रिझा सका। बल्कि मेरी तां सुरत दे, मेरी करनी दे हाथ पैर भी सिद्धे नहीं। कुलहीन कह लो, गुणहीन कह लो, ते जिहदी कुल भी कोई ना होवे, जिहदा गुण भी कोई ना होवे, उहदी शोभा भी सारी। ऐसी अवस्था च मैं तेनू प्राप्त किवें होवां, तेनू प्रवान किवें होवां, तेरे नेड़े किवें होवां, कोई चारा नहीं। हां जद यह जानना कि तेरा बिरध बख्श लैण वाला है, तेरा सुभा तेरा नेम बख्श लैण दा, उदों आके भरोसा थोड़ा हो जांदा। जिसले मैं तेरे बारे यह जानना तेरे बारे सुनदा समझदा मैं मनदा हां, जो हम अदम कर्म कह पतित पहे, माड़े कमा करके असी तो पापी हो गए, पर तेरा भी तो ना पतित पावन प्रभ नाम प्रगटायो है, तेनू तो लोग कहंदे ने पापियां नू पवित्र करन वाला। जो पहे दुखी अर दीन, पर चीन लग पुराने माड़े कर्मा करके दुखी हो गए हां, कि तेरा भी तो ना दुख भजन दीन दुख भजन बिरद बिरद आयो है, तेरा भी तो सुभा पुराना है कि दीना दे दुख दूर करदा है। जौ ग्रसे अर्क सुत नरक निवासी पए, माड़े कमां दे बंधन च पए होए, असी जूंदे ही नरक च पए गए। कुछ तां हुंदे ने मरन तो बाद नरकां च जाणगे, ऐसा सोची बैठे ने, नरक तो डरदे ने, पर मेरे माड़े कमां ने तां मैनू इत्थे ही नरक बना के रख दिता। हिरदे विच नरक बन गया, घर च नरक बन गया, जीवन की जुगत होवे ते घर स्वर्ग बन जांदा, हिरदा ही स्वर्ग बन जांदा। जीवन का ढंग ठीक ना होवे, एक हिरदा की ते एक घर की, आले दुआले नूं बंदा नरक बना के रख दिंदा। मरण तो बाद ते नरक दीआं गल्लां इक पासे, जीवन विच भी नरक स्वर्ग चल रहे। कुछ ऐसे भी ने जिहड़े कंडियां दी सेज ते भी स्वर्ग बना बैंदे, ते कुछ ऐसे भी ने माड़े कम्मां वाले मेरे वर्गे जिहड़े फुल्लां दी सेज ते भी नरक खड़ा कर लैंदे। मेरी करनी तां इस तरह दी है, मैं तां नरक निवासी हो गया, मैं नरक बना लिया, मैं जिउंदा ही नरक च पै गया। पर नरक निवारण जगत जस गाया, लोकी तेरा जस गाउंदे ने, तूं नरकां विचों कढ लैण दी समर्था वाला। ते नाले इक गल होर है, संसार दीआं गल्लां होर ने, निरंकार दीआं गल्लां होर सुणीआं ने। संसार दी गल तां इह है कि हर कोई इह सोचदा है कि मेरे नाल किसने की कीता है ते मैं उहदे नाल की करां। जरा जिहा प्रतीत हो जावे कि मेरे नाल किसे ने बुरा कीता ते बंदा व्यौंतां करदा है कि हुण मैं किहड़े वेले उहनूं चार हथ विखावां। ते जे किते इह अहसास हो जावे, महसूस हो जावे किसे ने मेरे नाल भला कीता ते बंदा चाहुंदा इह भाजी हुण कदों मोड़ां। पर यह तो संसारियां दीआं गल्लां ने, हिसाब रखण वालियां दीआं गल्लां ने, ते तेरे नाल तां हिसाब नहीं रह सकदा, क्योंकि जितने तू गुण मेरे नाल कीते ने, जिन्ने तू मेरे ते परपकार कीते ने, जे मैं उन्हां दा हिसाब करन बह जावां ते शर्म नाल
ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤੇਰਾ ਪਰਉਪਕਾਰ।